मुहब्बतें और भी बढ़ती है, बिछड़ जाने से। मुहब्बतें और भी बढ़ती है, बिछड़ जाने से।

अड़या लोक मारी दे ताने वे, जो सी पीड़ पराई असी अपने तन ते ला बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। छोटी उम्रे अखियां लाइया लगे रोग अवले, मीडिया खुल के गले च लटकन लोक आख दे चले। तेरे तीर ही जर दे सजना, तेरे तीर ही जर दे सजना, असी अपने सीने खा बैठे। तू की दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे।

जो दुनिया पत्थर मारे असी ओ भी हस हस खा बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। तू की दर्द नू जाने असी बहुता दर्द हंडा बैठे। इश्क दी पौड़ी पैर टका के ये

चुप चाप पई दिसी एक पक्षी सी, माने बोये कोल सांब के जो रखी सी। पखे बिजली देने पैरां विच रोलिया, संदूक

सब दरिया खेस कब राए सी, वेला बूटे माने चावा नाल पाए सी। गद्दे बेड देने पैरां च मदोलिया, संदूक मां दा जदों सी मैं खोलिया। हार

जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, तेरियां लाडलियां पर।

ताई। भैन ने आनी बकरी पारो वे, भैन ने आनी बकरी पारो वे, जांदी नहीं वराई। चाचे ताए बाबल तेनू अणखां दी गठ फड़ाई, सोरे घर जातीए कर लई फर्जां दी कमाई। जा सोरे कर दिए ले जा लट्टां भरी विदाई, जा सोरे कर दिए ले जा लट्टां भरी विदाई।

होई। जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई, जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। पटोलियां दी खेड मुक्की, पटोलियां दी खेड मुक्की, वीरां संग रोक मनाई।

विस्फोटे इकट्ठे कर ले, अपनी झूठी शान दिखा कर बेसमेंट सब भर ले। रजनीये नू पता नहीं लगना, रजनीये

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का। जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का। आदमी तू अगर आदमी ना बना, तो ये जीवन भला है ये किस काम का। जिंदगी का सफर ये सुहाना बने,

खुश रहे जो सदा उसकी मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा बस।

0: एहसास कदे। थैंक यू।
1: सुखविंदर कौर जी तो बाद हुण मैं सदा देण जा रहा जम्मू बस दे साडे शायर हरभजन सिंह अपाशिक जी नूं। हरभजन सिंह अपाशिक जी साडियां कामे पलां दे विच आउंदे रहिंदे ने। इस वार ओह साडे विशेष सद्दे दे उत्ते किसानी संघर्ष नाल जुड़ के अपनी एक कविता लेके हाजिर हो रहे ने। हरभजन सिंह अपाशिक जी, तुहाडा दुआबा रेडियो दे हफ्ताबारी कवि दरबार दे विच निघा स्वागत है जी।
2: शुक्रिया याब साहब, मेरी अज दी कविता देश दे किसानां नूं समर्पित है। कार ते आग अन्नदाता सड़कां ते आया है, भारती किसान भारत मान दा जाया है। कार ते आग अन्नदाता सड़कां ते आया है, भारती किसान भारत मान दा जाया है। ईमानदारी नाल अपना फर्ज नभाया है, मुनका बहा के मिट्टी चो सोना उगाया है। आई क्रांति हरा इनकलाब ले आया है, पर दित्ते अन भंडार आत्म निर्भर बनाया है। कार त्याग अन्नदाता सड़कां ते आया है, भारती किसान भारत मां दा जाया है। अज अन्नदाता लाचार हो गया है, काले कानूनां दा शिकार हो गया है। निंदनी निर्दयी सरकारी व्यवहार हो गया है, लाठियां बुछारा कुटमार अतिया चार हो गया है। पूजियां पतियां ले डाडा प्यार हो गया है। निरा अहं होंद खातर पेचा फसाया है, कार त्याग अन्नदाता सड़कां ते आया है, भारती किसान भारत मां दा जाया है। देश दे किसानां नूं इधर उधर ना भटकावो, बिना कारण बेलोड़ी बैठकां ना लमकावो। देश भगतां ते देश धरोही लेबन ना लावो, एवें किसान एकता ना अजमावो। किसानी करदे किसानां दा ना ध्यान वटावो, दूर करो सब संसे शंकियां चो ना फसावो। देश भगतां नूं भंबल पूसियां चो पाया है, कार त्याग अन्नदाता सड़कां ते आया है, भारती किसान भारत मां दा जाया है। यतन हो रहा है किसान एकता तोड़न दा, हक दी लड़ाई दा रुख मोड़न दा। समाजक विरोधी तत्तां नूं सफां च जोड़न दा, नरोल किसान अंदोलन नूं प्रांतां खित्तियां च फोड़न दा। सियाणे किसानां ने सतर्कता सावधानी नूं अपनाया है, कार त्याग अन्नदाता सड़कां ते आया है, भारती किसान भारत मां दा जाया है, भारती किसान भारत मां दा जाया है।
1: रेडियो दे प्यारे श्रोतियों, हरभजन सिंह अपाशिक जी दी रचना तों बाद हुण मैं कवि दरबार दे अंत

अपने वीरा नाल माए रल के मैं रेंदी सी, तेरे कर बैठी माए दस तेनू की कहंदी सी, जुदा अपने तो कीता माए, जुदा अपने तो कीता माए, तू तो दुख भी ना फोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए कंधा दे ओले नी। तिया तन ने बेगाना माए, तिया तन ने बेगाना माए, सच कर दे।

ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे, जिंद वादियां चे डूब गई, जिंद वादियां चे डूब गई जिस्म तरी जांदे, ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे, चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम, चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम, की करां जे आपे चे, की करां जे आपे चे।

डूब गई जे संतरी जांदे, ओ डूब जाना जे भी वादे करी जांदे। जोर ना मंगदे नहीं आपी भला देवे क्यों, जोर ना मंगदे नहीं आपी भला देवे क्यों। गली बाती जे सदा

रहंदे हन गुरदेव सिंह जी ते माता अजमेर कौर जी। इन्हां दा पुत्र है कलवंत सिंह सैदू के, जिहड़ा रोजी रोटी दे मामलियां दे विच फौज दे विच भर्ती हो गया ते उत्थे उसने ज्ञानी बलकार सिंह गुराया जी दी रहनमई थले लिखना शुरू किया ते फौज दे विच बहुत लंबा समां गाया, बहुत सारे कोर्स कीते, तरक्कियां प्राप्त कीतियां ते अज कल ओह पटियाला शहर विखे रह रहे ने ते नाल दी नाल लिखण पढ़न ते गाउण दा शौक पूर रहे ने। अज ओह साडी कामेफल दे विच एक गीत लैके हाजिर हो रहे ने। उन्हां दा दुआबा रेडियो दे प्रोग्राम कवि दरबार दे विच निघा स्वागत है।

आखदे ने लोक ही काठो कहानियां हड़ एकता दा केड़ा सके रो कहानियां हड़ एकता दा केड़ा सके रो कहानियां हड़ एकता दा बन के कटामा असी धरती बसणाए बन के कटामा असी धरती बसणाए धोवांगे गवार जेड़े बिच पौण दे सिर बढ़ने ने सिर बढ़ने ने बीमी सदी दे रौण दे सिर बढ़ने ने सिर बढ़ने ने बीमी सदी दे रौण दे सिर बढ़ने ने वेलड़ा ने मान

देश चो भुख मिटाई, हां खून पसीना डोल के अपना, देश चो भुख मिटाई। सदियां तो परेस दी किस्मत, सदियां तो परेस दी किस्मत इस नू रास न आई। दुनिया लई अन्नदाता बनिया, घर दी खबर नकाई। झूठे वादे फोके नारे इस

अति रात तक करना आंदा, अति रात तक करना आंदा, सप्पा दिया सिरिया नप के सौंदा, अति रात तक करना आंदा, सप्पा दिया सिरिया नप के सौंदा। अच हंजू केर रोवे, अच हंजू केर रोवे अन्न दाता संसार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो, तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो। किंज पैने फिर कित्ते भंगड़े, किंज पैने फिर कित्ते भंगड़े, की मतलब हो विसाखी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा। वास्ता पंजाबीओ, वास्ता पंजाबीओ मां धरती दे दुलार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। बस करो हुण होर नी सहना, बस

0: या फिर बस उन्हें नौकरी लेनी है,
1: हाँ
0: मान
1: जी
0: लो
1: हाँ
0: कोई
1: जी
0: भी बच्चा, उन्हें नौकरी लेनी है,
1: नौकरी
0: बस
1: लेनी है।
0: नौकरी लेनी है,
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: उहदे लई देखो सब तो बेस्ट ऑप्शन की है कि वो 12वीं तक अगर वो आर्ट्स दे विच पढ़ना है, सही मान लो कि वो स्टडीज दे विच ठीक ठाक है पढ़ने लई, ठीक है, वो आर्ट्स दे विच प्लस टू कर रहे हैं,
1: हाँ जी
0: उस तो बाद वो ग्रेजुएशन करेगा, तो उहदे कोलो 3 साल दे विच अगर वो 3 साल अपनी ग्रेजुएशन दे नाल नाल
1: हाँ जी
0: कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दी तैयारी करना शुरू कर लवे, जेडे कि
1: अच्छा जी
0: एसएससी दे थ्रू हुंदे हैं, या फिर बैंक एग्जाम हुंदे हैं, बैंक दे क्लैरिकल दे एग्जाम हुंदे हैं, बैंक पीओ दे एग्जाम्स हुंदे हैं,
1: हाँ
0: ठीक है,
1: जी
0: तो उन्हां दी तैयारी करना शुरू कर लवे बच्चा, तां
1: ठीक
0: भी
1: है जी
0: बहुत बेस्ट है, क्योंकि देखो 3 साल जेडे ग्रेजुएशन बेसिस दे जिन्ने भी टेस्ट मैं तुहानू दस रही हां हुण, तां
1: हाँ
0: सारे
1: जी
0: ही मोस्टली जेडे हैं इन्हां दा सिलेबस जेड़ा है तकरीबन तकरीबन सेम ही हुंदा सब दा,
1: अच्छा जी
0: तां रीजनिंग पार्ट हो गया, जीके, करंट अफेयर, इदां दा ही सिलेबस, थोड़ी बहुत ही वेरिएशन जरूर हुंदी है, बट इह सारा सिलेबस जेड़ा इन्हां दा सेम ही हुंदा है।
1: अच्छा जी
0: अगर बच्चे अपने 3 सालां दी ग्रेजुएशन दे नाल हर रोज 2 घंटे खुद सेल्फ स्टडी करके वो सिलेबस जो जेडे जिन्ने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आंदे ने सब दा सिलेबस ले लैन,
1: हाँ जी हाँ जी
0: तकरीबन तकरीबन जेड़ा कि सेम ही है, वो 2 घंटे भी उस तैयारी उसकी तैयारी 3 साल तक करनगे, तो तुसी अंदाजा लगा लो कि उन्हां दे जो सक्सेस चांसेस हैं वो किन्ने ज्यादा वध जाएंगे,
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: सिलेक्शन दे चांसेस किन्ने ज्यादा वध जाएंगे।
1: सही गल है जी
0: हाँ, तो वो ग्रेजुएशन दे नाल नाल कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी तैयारी जरूर करना शुरू कर दें,
1: बिल्कुल जी एक
0: बट
1: मैडम हाँ जी
0: हाँ जी, बट अगेन ना अपने च ये चीज दी कमी है साडे मोस्टली जेड़ा साडा पेंडू तबका है, साडे जेड़े विलेजेस च रहंदी यूथ है,
1: हाँ जी
0: उन्हां नू ना इस चीज दी अवेयरनेस ही नहीं है कि केड़े केड़े सरकारी नौकरियां निकलदियां ने, केड़े केड़े टेस्ट हुंदे ने सरकारी नौकरियां नू लैण दे लई, ठीक है, तो वो चीज दी अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है।
1: हाँ बिल्कुल ये तो जरूरी है जे पता
0: हाँ
1: ही नहीं
0: जी,
1: है तो करेंगे की
0: हाँ बिल्कुल, तो हुण जेड़ा मैं तुहानू पहला सब इस दे बिटवीन ही मैं तुहानू एक साडा जो एक्टिविटी शेयर कीती सीगी कि असी अपने कैंडिडेट्स दी लिस्ट निकालदे हां और उन्हां नू अवेयर करदे हां, उन्हां नू बल्क मैसेजेस दे थ्रू उन्हां नू अवेयरनेस दिंदे हां कि
1: हाँ
0: ए
1: जी
0: वाले टेस्ट निकले हुए ने, तुसी अप्लाई कर सकते हो,
1: अच्छा जी
0: तां इसी तरीके दे नाल ए चीज दे विच असी कम कर रहे हां, बट यही है कि साडे कोल जब तक यूथ खुद चल के साडे कोल आके पुछेगी नहीं या उन्हां दे खुद अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं होएगा कुछ करन दा, तां उदों तक साडियां जेहड़ियां कोशिशां नहीं कामयाब नहीं हो
1: नहीं हो
0: सकदियां, जब तक
1: सकदियाँ
0: यूथ खुद नहीं मोटिवेट हुंदी कम करन दे लई या
1: बिल्कुल जी
0: फिर तैयारी करन दे लई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी।
1: बिल्कुल जी मैडम साहिबाना जी तुहाडियां गल्लां बड़ियां कीमती ने जो लगातार सुनते रहना चाहिए है पर समा जिड़ा हैगा वो सानू इजाजत नहीं दिंदा कि आपां
0: हाँ जी,
1: होर इन्हां गल्लां नू सुनते रहिए ये गल्लबात आपां करते रहिए विचार चर्चा करते रहिए सो अज दा जिहड़ा समा साडा वो समाप्त हुंदा है तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद तुसीं बड़ियां कीमती गल्लां साडे स्रोतियां दे नाल सांझियां कीतियां
0: जी
1: हुण वेला हो गया प्रोग्राम नूं समाप्त करन दा
0: हाँ
1: रेडियो दुआबा
0: हाँ जी,
1: ते स्रोतियां दा मैं धन्नवाद करदा जिन्हां ने साडे प्रोग्राम नूं बड़े वधिया तरीके नाल सुणिया ते उम्मीद करदे हां इन्हां गल्लां नूं सुण के इन्हां नूं अपना के ते अपनी जिहड़ी जिंदगी है अपना भविष्य है उहनूं बेहतर बनाउण वल वधोंगे तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद शुक्रिया जी
0: थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।

0: खुफिया खुफिया खुफिया खुफिया खुफिया रे पोटिया आई नंदनों, जिथे तू कराया जाके ब्यानी। खुफिया रे पोटिया आई नंदनों, जिथे तू कराया जाके ब्यानी। चंदरी कड़ी सानू दिल चो, लिया किसी होरी नू वसानी। खुफिया रे पोटिया आई लंदनों, जिथे तू कराया जाके ब्यानी। खुफिया रे पोटिया आई लंदनों, जिथे तू कराया जाके ब्यानी।
1: वाह
0: कसमां तू खादियां सी लखनी, एक भी ना तेरे कोलों फूकी नी। वेख के तू ओथे मैल मारिया, भुल गई अज साडी चुकी नी। कसमां तू खादियां सी लखनी, एक भी ना तेरे कोलों पुगी नी। देख के तू ओथे मैले मारिया, भुल गई अज साडी चुकी नी। ओथे दे व्यापारियां ने मोलिया, तेनू चांदी दियां छिलड़ां वखानी। चंदरी काढ़ी सानू दिल चो, लिया किसे होरे नू वसानी। खुफिया रे पोटिया आई लंदनों, जिथे तू कराया जाके ब्याहानी। खुफिया रे पोटिया आई लंदनों, जिथे तू कराया जाके ब्याहानी। शहर दे बहाने डुब जानिए, साडे कोलों मारगी उड़ारियां।
1: वाह जी
0: दिल दिया ठाडियां तू सदरां, पैरां थले लैके नी लताड़ियां। खैर दे बहाने डुब जानिए, साडे कोलों मारगी उड़ारियां। दिल दिया साडियां तू सदरां, पैरां थले लैके नी लताड़ियां। पैसियां दी गल सी जे भुखिए, तेरे कदमां च दिंदा वै निशानी। चंदरी काढ़े सानू दिल चो, लिया किसे होरे नू वसानी। खुफिया रे पोटिया आई लंदनों, जिथे तू कराया जाके ब्यानी। खुफिया रे पोटिया आई लंदनों, जिथे तू कराया जाके ब्यानी। आऊगा नी लाली तेनू याद नी, जदों नैना रूप ना ए रंगनी। मार के उड़ारी उड़ जाऊगी, सदा ना जवानी रहनी संगनी। आऊगा नी लाली तेनू याद नी, जदों रहना रूप ना ए रंगनी। मार के उड़ारी उड़ जाऊगी, सदा ना जवानी रहनी संगनी। रब करे तू भी उदो तड़पे, जिदा रही मैं।